0: गए। ज्यों बंदर को थमे थमन त्यों गुर का शब्द मन है अस्थमन, ज्यों पाखाण नाव चढ़ तरे प्राणी गुर चरण लगत निस्तरे, ज्यों अंधकार दीपक प्रगास गुरदर्शन देख मन होए बिगास। ज्यों महा उद्यान मह मार्ग पावे त्यों साधु संग मिल जोत प्रगटावे, तिन संतन की बाछौ तूर नानक की हर लोचा पूर। मन मूर्ख काहे बिल लाइए पूर्व लिखे का लिखिया पाइए। दुख सुख प्रभ दे बनहार अवर त्याग तूं तसै चितार, जो किश करै सोई सुख मान भूला काहे फिरे अजान। कौन बस आई तेरे संग लपट रहे हो रस लोभी पतंग। राम नाम जब हृदय माहे नानक पत से ती कर जाहे। जिस वखर कौ लैन तू आया राम नाम संतन कर पाया, ताज अभिमान ले हो मन मोल राम नाम हृदय महतोल। लाद खेब संतै सग चाल अवर त्याग बिखिया जंजाल, तन तन कह सब कोए मुख उजल हर दर गए सोए। एहो वापार विरला वापार है नानक ता कै सद बलिहार है, चरण साधके धोए धोए पियो अर्प साधको अपना जियो। साधके धूर करो इसनान साधु पर जाइए कुरबान, सा सेवा बड़बागी पाइए सा संग हर कीर्तन गाइए। अनक बिघन ते साधु राखै हर गुण गाए अमृत रस चाखै, उठ गही संतै दर आया सर्ब सुख नानक तेह पाया। मृतक कौ जी वालन हार भूखे कौ देवत आधार, सर्वनिदान जाके दृष्टि माहे पुरब लिखे का लहना पाहे। सब कैश तिस काउ करने जोग तिस बिन दूसर हो आना होग। जाप जान सदा सदा दिन रहनी सब ते ऊच निर्मल करनी, कर कृपा जिस कौ नाम दिया नानक सो जन निर्मल थिया। जाकै मन गुर की प्रतीत तिस जाने आवै हर प्रभ चीत। भगत भगत सुनिया तहो लोए जाकै हृदय को होए, सच करनी सचता की राहत सच हृदय सतमुख कहत। साची दृष्ट साचा आकार सच वरतै साचा पासार, पार ब्रह्म जिन सच कर जाता नानक सो जन सच समाता। श्लोक रूप नरेख नरंग किश त्रिह गुण ते प्रभ भिन्न, तिस है बुझाए नानका जिस होवै सो प्रसन्न। अष्टपदी अविनाशी प्रभ मन मह राख, मानुख की तू प्रीत त्याग। तिस्ते पर नाही किश कोए सर्व निरंतर एको सोए, आपे बिना आपे दाना गहर गंभीर गहीर सुजाना। पार ब्रह्म परमेश्वर गोबिंद कृपा ध्यान दयाल बख्शंद, सा तेरे की चरणी पाओ नानक कै मन एहो नराओ। मनसा पूर्ण सरना जोग जो कर पाया सोई होग, हरन भरन जाका नेत्र फोर तिसका मंत्र न जाने होर। आनंद रूप मंगल सद जाकै सर्व थोक सुनिए कर ताकै, राज महराज जोग मह जोगी तप मह तपीसर गृह सत मह भोगी। त्याय त्याय भगता सुख पाया नानक तिस पुरख का किने अंत ना पाया। जाकी लीला की मित ना है सगल देव हारे अवगा है। पिता का जन्म कै जाने पूत सगल परोई अपने सूत, सुमत ज्ञान त्यान जिन दे जन दास नाम त्यावें से। तेह गुण मह जाको परमाए जन्म रह फिर आवै जाए। ऊच नीच दिसके अस्थान जैसा जना वै तैसा नानक जान। नाना रूप नाना जाके रंग नाना पेख कर है एक रंग, नाना बिद की नो विस्तार प्रभ अविनाशी एक अंकार। नाना चलत करे खिन माहे पूर रहे ओ पूरन सब ठाई, नाना बिद कर बनत बनाई अपनी कीमत आपे पाई। ਸਭ ਕਰ ਦਿਸਕੇ ਸਭ ਤਿਸਕੇ ਠਾਉ, ਜਪ ਜਪ ਜੀਵੈ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਨਾਉ। ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਗਲੇ ਜੰਤ, ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ, ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਨ, ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸੁਨਨ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ, ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਆਗਾਸ ਪਾਤਾਲ, ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਗਲ ਆਕਾਰ, ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਪੁਰੀਆ ਸਭ ਭਵਨ, ਨਾਮ ਕੈ ਸੰਗ ਉਦਰੇ ਸੁਨ ਸ੍ਰਵਨ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਲਾਏ, ਨਾਨਕ ਚੌਥੇ ਪਦ ਮਹਿ ਸੋ ਜਨ ਗਤ ਪਾਏ। ਰੂਪ ਸਤ ਜਾ ਕਾ ਸਤ ਅਸਥਾਨ, ਪੁਰਖ ਸਤ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਕਰਤੂਤ ਸਤ ਸਤ ਜਾ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਸਤ ਪੁਰਖ ਸਭ ਮਾਹੇ ਸਮਾਣੀ, ਸਤ ਕਰਮ ਜਾ ਕੀ ਰਚਨਾ ਸਤ, ਮੂਲ ਸਤ ਸਤ ਉਤਪਤ, ਸਤ ਕਰਨੀ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਮਲੀ, ਜਿਸ ਹੈ ਬੁਝਾਏ ਤਿਸ ਹੈ ਸਭ ਭਲੀ। ਸਤ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸੁਖਦਾਈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਈ। ਸਤ ਬਚਨ ਸਾਧੂ ਉਪਦੇਸ਼, ਸਤ ਤੇ ਜਨ ਜਾ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਪ੍ਰਵੇਸ਼, ਸਤ ਨਿਰਤ ਬੂਜੈ ਜੇ ਕੋਏ, ਨਾਮ ਜਵਤਤਾ ਕੀ ਗਤ ਹੋਏ। ਆਪ ਸਤ ਕੀਆ ਸਭ ਸਤ, ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪਣੀ ਮਿਤ ਗਤ, ਜਿਸ ਕੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸੋ ਕਰਨੈ ਹਾਰ, ਅਵਰਨਾ ਬੂਝ ਕਰਤ ਵਿਚਾਰ। ਕਰਤੇ ਕੀ ਮਿਤ ਨਾ ਜਾਣੈ ਕੀਆ, ਨਾਨਕ ਜੋਤ ਸੁਭਾਵੈ ਸੋ ਵਰਤੀਆ। ਬਿਸਮਨ ਬਿਸਮ ਭਏ ਬਿਸਮਾਦ, ਜਿਨ ਬੂਝਿਆ ਤਿਸ ਆਇਆ ਸਵਾਦ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਰੰਗ ਰਾਚ ਜਨ ਰਹੇ, ਗੁਰ ਕੇ ਬਚਨ ਪਦਾਰਥ ਲਹੇ, ਓਏ ਦਾਤੇ ਦੁੱਖ ਕਾਟਨ ਹਾਰ। ਜਾ ਕੈ ਸੰਗ ਤਰੈ ਸੰਸਾਰ, ਜਨ ਕਾ ਸੇਵਕ ਸੋ ਵਡਭਾਗੀ, ਜਨ ਕੈ ਸੰਗ ਏਕ ਲਿਵ ਲਾਗੀ। ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਕੀਰਤਨ ਜਨ ਗਾਵੈ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਫਲ ਪਾਵੈ। ਸਲੋਕ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, ਹੈ ਪੇ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਪੇ ਸੱਚ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਚਰਨ ਸਤ ਸਤ ਪਰ ਸੰਹਾਰ, ਪੂਜਾ ਸਤ ਸਤ ਸੇਵਦਾਰ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਤ ਸਤ ਪੇਖਨ ਹਾਰ, ਨਾਮ ਸਤ ਸਤ ਧਿਆਵਨ ਹਾਰ।
1: ਸ਼ਬਦ ਸਤ ਸਤ ਪ੍ਰਭਕਤ, ਸੁਰਤ ਸਤ ਸਤ ਜਸੰਤਾ, ਭੋਜਨ ਹਰ ਕਉ ਸਤ ਸਭ ਹੋਏ। ਨਾਨਕ ਸਤ ਸਤ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ, ਸਤ ਸਰੂਪ ਹਿਰਦੈ ਜਿਨ ਮਾਨਿਆ, ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਤਿਨ ਮੂਲ ਪਛਾਨਿਆ। ਜਾ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ, ਤਤ ਗਿਆਨ ਤਿਸ ਮਨ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ, ਭੈ ਤੇ ਨਿਰਭਉ ਹੋਏ ਬਸਾਨਾ, ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜਿਆ ਤਿਸ ਮਾਹੀ ਸਮਾਨਾ। ਬਸ ਮਾਹਿਲੇ ਬਸ ਗੁਡਾਈ, ਤਾਂ ਕਉ ਭਿੰਨਾ ਕਹਿ ਨਾ ਜਾਈ, ਬੂਝੈ ਬੂਝਣ ਹਾਰ ਵਿਵੇਕ ਨਾਰਾਇਣ, ਮਿਲੇ ਨਾਨਕ ਏਕ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਆਗਿਆਕਾਰੀ, ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਸਦਾ ਪੁਜਾਰੀ, ਠਾਕੁਰ ਕੇ ਸੇਵਕ ਕੈ ਮਨ ਪ੍ਰਤੀਤ, ਠਾਕੁਰ ਕੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤ, ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਜਾਣੈ ਸੰਗ, ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸੇਵਕ ਨਾਮ ਕੈ ਰੰਗ, ਸੇਵਕ ਕਾ ਪ੍ਰਪਾਲਨ ਹਾਰਾ, ਸੇਵਕ ਕੀ ਰਾਖੈ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਸੋ ਸੇਵਕ ਜਿਸ ਦਿਆ ਪ੍ਰਭ ਧਾਰੈ, ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੇਵਕ ਸਾਥ ਸਾਥ ਸਮਾਰੇ, ਆਪਣੇ ਜਨਕਾ ਪਰਦਾ ਢਾਕੈ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਸਰ ਪਰ ਰਾਖੈ, ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਕੋ ਦੇ ਵਡਾਈ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪਾਈ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਆਪਤ ਰਾਖੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਗਤ ਮਿਤ ਕੋਇ ਨਾ ਲਾਖੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਕਾ ਕੋ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਏ, ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਉਸਤੇ ਉੱਚੇ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਲਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੇਵਕ ਦਾ ਦਿਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ, ਨੇਕੀ ਕੀਰੀ ਮੈਂ ਕਲ ਰਾਖੈ, ਭਸਮ ਕਰੇ ਲਸਕਰ ਕੋਟ ਲਾਖੈ, ਜਿਸ ਕਾ ਸਾਸ ਨਾ ਕੱਢ ਤੇ ਆਪ ਤਾਂ ਕੋ ਰਾਖਤ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ, ਮਾਨਸ ਜਤਨ ਕਰਤ ਬਹੁ ਭਾਤ, ਤਿਸਕੇ ਕਰਤ ਬਿਰਥੇ ਜਾਤ, ਮਾਰੇ ਨਾ ਰਾਖੇ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ, ਸਰਬ ਜੀ ਆਖਾ ਰਾਖਾ ਸੋਏ, ਕਾਹੇ ਸੋਚ ਕਰਹਿ ਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਜਪ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਲੱਖ ਵਡਾਣੀ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਬਾਰ ਪ੍ਰਭ ਜਪੀਐ ਪੀਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤੇ ਮਨ ਤੰਤਰ ਪੀਏ, ਨਾਮ ਰਤਨ ਜਿਨ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਇਆ, ਤਿਸ ਕਿਛੇ ਅਵਰ ਨਾਹੀ ਦਿਸ਼ਟਾਇਆ, ਨਾਮ ਧਨ ਨਾਮੋ ਰੂਪ ਰੰਗ ਨਾਮੋ ਸੁਕਰ ਨਾਮ ਕਾ ਸੰਗ, ਨਾਮ ਰਸ ਜੋ ਜੰਤ ਪਤਾਨੇ, ਮਨ ਤਨ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾਮ ਸਮਾਨੇ, ਉਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਵਤ ਨਾਮ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੈ ਸਦਕਾਮ, ਬੋਲਹੁ ਜਸ ਜਿਹਵਾ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਜਨ ਕੀ ਨੀਦਾਤ, ਕਰਹਿ ਭਗਤ ਆਤਮ ਕਹਿ ਚਾਏ, ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਸਿਉ ਰਹਿ ਸਮਾਏ, ਜੋ ਹੋਵਾ ਹੋਵਤ ਸੋ ਜਾਣੈ, प्रभु अपने का हुक्म पहचाने, तिसकी महिमा कौन बखानाऊ, तिसका गुण कहे एक न जानाऊ, आठ पैर प्रभु बसहे हजूरे, कौ नानक सही जन पूरे, मन मेरे तिनकी ओट लेह, मन तने अपना तिन जन देह, जिन जने अपना प्रभु पछाता, सो जन सर्व थोका दाता, तिसकी शरण सर्व सुख पावे, तिसके दर सब पाप मिटावे, अवर सयान पसगली छाड़, तिस जन की तू सेवा लाग, अवन जाना होवे तेरा, नानक तिस जन के पूजो सद पैरा, सलोक सतपुरख जिन जानिया, सतगुर तिस का नाओ, तिस कै संग सिख उदरे, नानक हर गुण गाओ, अस्पति सतगुर सिख करै प्रतिपाल, सेवका गुर सदा दयाल, सिखी गुर दुरमत मल हिरै, गुरबचनी हर नाम उचरै, सतगुर सिख के बंधन काटै, गुर का सिख विकार ते हटै, सतगुर सिख का नाम धन दे, गुर का सिख वरभागी हे, सतगुर सिख कालत पल सवार, नानक सतगुर सिखो जीअ नाल समारे, गुर कै गृह सेवक जो रहै, गुर की आग्या मन मै सहै, आपस कौ कर कछ न जनावै, हर हर नाम हृदय सत्यावै, मन बिचै सतगुर के पास, ते सेवक के कार्ज रास, सेवा करत होए न कामी, तिस कहोत प्राप्त स्वामी, अपने कृपा जिसे आप करे, नानक सो सेवक गुर की मत ले, बेस विश्वे गुर का मन मानै, सो सेवक परमेश्वर की गत जानै, सो सतगुरु जिस हृदय हर नाओ, अनक बार गुर कौ बल जाओ, सर्व निधान जी का दाता, आठ पैर पर ब्रह्म रंग राता, ब्रह्म है जन जन में पार ब्रह्म, एक है आप नहीं कछ परम, साहस से अनपलया न जाइए, नानक ऐसा गुर बड़भागी पाई, सफल दर्शन पेखत पुनीत, पर सचन गत निर्मल रीत, भेट संग राम गुण रवे, पार ब्रह्म की दरगे गवे, सुनकर बचन करने अघाने, मन संतोख आत्म पतिया ने पूरा, गुर अख्यो जाका मंत्र अमृत, दृष्ट भेखे हुए संत गुण बेअंत, कीमत नहीं पाए, नानक जिस पावे तिस लय मिलाए, जेवा एक उस्तत अनेक, सतपुरख पूर्ण विवेक, कहु बोल न पहुंचत प्राणी, अगम गोचर प्रभ निर्वाणी, निराहार निर्वैर सुखदाई, ताकि कीमत किने न पाई, अनक भगत बंधन नित करे, चरण कमल हृदय सिमरै, सत बलिहारी सतगुरु अपने, नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने, एहो हर रस पावे, जन कोई अमृत पीवे अमर सोवे, उस पुरख का ना ही कदे विनाश, जा कै मन प्रगटे गुणतास, आठ पैर हर का नाम ले, सच उपदेश सेवक का दे, मोह माया कै संग न लेप, मन में रखे हर हर एक, अंधकार दीपक प्रगासे, नानक भरमो दुख तै ते नासे, तप्त माए ठाट वरताई, अंध पया दुख नाटे भाई, जन्म मरण के मिटे अंदेसे, साधु के पूर्ण उपदेशे, पाव चुका निरपा हुए बसे, सकल व्याद मन ते खै नसे, जिसका सातिन कृपा तारी, सा संग जपना मुरारी, थित पाई चुके ब्रह्म गवन, सुन नानक हर हर जस रवन, निर्गुण आप सरगुण पियोही, भला तार जिन सगली मोही, अपने चरित प्रभु आप बनाए, अपनी कीमत आपे पाए, हर बिंदु जाना ही कोय, सर्व निरंतर एको सोए, ओतपोत रविया रूप रंग, पय प्रगास साध कै संग, रच रचना अपनी कल तारी, अनक वार नानक बलिहारी, सलोक

जापयस्पदि जब कार्य कछ न दिष्टे तब आपन तब कहते होता जब धारी अपन सुन समाध तब बैर विरोध किस संग कमात जब इसका वर्ण चिहन न जापत तब हर्क शोक कौ किस व्यापत जब अपने आप या पार ब्रह्म तब मोह कहाँ किसोवत परमे अपन के लिए आवर्ती जा नानक करने हर न दूजा जब होवत प्रभ केवल तनी तब बंद मुक्त कौ किस कौ गनी जब एक अर्यग में पार तब नरक सुर कौ कौन अवतार जब निर्गुण प्रभ सहज सुबाए तब शिव शक्त कहो कित ठाए जब आपे आपे अपनी ज्योत रह तब कवन डर कवन कत डरे अपन चलते आप करने हार नानक ठाकुर अगम अपार अविनाशी सुख अपने आसन तय जन्म मरण कौ कहाँ विनाशन जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कहो हो किस होए जब अभिगत अगोचर प्रभ एका तब चित्र गुप्त किछ पूछत लेखा जब नाथ निरंजन गोचर गा दे तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे अपने आप ही अचर जा नानक अपन रूप आप ही उपर जा जा निर्मल पुरख पुरख पत होता तय बिन मैल कहो हो क्या तोता जय निरंजन निरंकार निर्वाण तय कौन को मान कौन अभिमान जय स्वरूप केवल जगदीश तय चल चित्र लगत कौ की जय जो स्वरूपी जो संग समावे तय किसे भूख कवन तिपता वै कर्ण करावन करने हार नानक करते का नाय सुमार जब अपनी शोभा अपन संग बनाई तब कवन माए बाप मित्र सुत पाही जय सर्व कला आपे परवीन तय वेद कतेब कहाँ को चीन जब अपने आप उतारे तो सगने अपसगन कहाँ बिचारे जय अपने ऊचे अपने अपने रा तय कौन ठाकुर कौन कही चेरा बिस्मन बिस्म रहे बिस्माद नानक अपनी गत जाना हो आप जय अचल छेद भेद समाया ऊहा किस व्याप्त माया आपस कवा पह आदेश तेह गुण का नाही प्रवेश जय कह एक एक भगवंता तय कौन चिंत किस लागे चिंता जय अपने आप आपति आरा तय कौन कतः कौन सुनने हारा भव बेअंति ऊचते ऊचा नानक आपस को आपे पहुँचा जय आप रचियो प्रपंच अकार तेह गुण में किन्नो विस्तार पाप पुनते भई कहावत को नरको सुरख बंशावते आल जाल माया जंजाल हो मैं मोह परम पै पार दुख सुख माने अपमाने अनक प्रकार की ओ बखे आने अपन खेले आप कर देखे खेल संकोचे तौ नानके कह जय अवगत भगत आप जय पसरे पसार संत प्रताप दूहूँ पाका आपे तनी उनकी शोभा उन्हूँ बनी आपे कौत करे आनंद चोज आपे रस भोगन निरजोग जिस भावे तिसे अपन नाय लावे जिस भावे तिस खेल खिलावे बेस मारे था।

गावस्पति पूरे गुरु का सुने उपदेश पार ब्रह्म निकट कर पेक्षा सा सिमरो गोविंद मन अंतर की उदय चिंत आसन त्याग गोतरांग संजना की तूर मन मांगे आप छोड़ बेनती करो सात संग अगन सागर तरह हर तन के परले हो भंडार नानक गुरपुरे नमस्कार केम कुशल सहज आनंद सात संग पज परमानंद नरक निवार उदार हो जियो गुण गोविंद अमृत रस पियो चित चित भव नारायण एक एक रूप जाके रंग अनेक गोपाल दामोदर दीन दयाल दुख भंजन पूर्ण कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी कहे अदारी उत्तम श्लोक साध के वचन अमली कला लेह रतन संत कमावत होत उदार आप तरह लोक कह निस्तार सफल जीवन सफलता का संग जाके मन लागा रंग जय जय शब्द अनाहद वाजय सुन सुने अंध करे प्रभ गाजय प्रगट गोपाल महात कह माते नानक उदरे तिनके साथे सन जोग सुन सरनी आए कर कृपा प्रभ आप मिलाए मिट गए बैर भय सब रेन अमृत नाम साध संगलैन सो प्रसन्न भय गुरुदेव पूर्ण हुई सेव की सेव आल जंजाल बेकार तेरे ते राम नाम सुन रसना कहते कर प्रसाद दया प्रभ धारी नानक ने भी खेप हमारी प्रभ की उस्त करो संत मीत सावधान एकाग्र चित सुखमनी सहज गोविंद गुण नाम जिस मन बसे सोहत निधान सर्वेच्छा था कि पूर्ण होए प्रधान पुरख प्रकट सब लोए सब ते उच पाए स्थान बल न होवे आवन जान हर तन खार चले जन सोए नानक जिसे प्राप्त होए खेम शांत रिद नव निध बुद्ध ज्ञान सर्वत सिद्ध विद्या तप योग प्राप्त आन ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान चार पदार्थ कमल प्रगास सब कहमत सकल ते उदास सुंदर चतुर्दत्त कविता संदर्शी एक देश चेता ए बल तिस जन कै मुख बने गुरु नानक नाम बचन मन सुने

आए हुए हुक्मनामा साहब जी की कथा विचार गुरबाणी कीर्तन छे पौड़ियां आनंद साहब जी की अरदास भुल चुक माफ करनी अगे तो शुद्ध ते स्पष्ट गुरबाणी पढ़न विचारन की दात बख्शिश करनी आप जी दे हजूर आप जी दे दरकर दे सेवक जौबिन खरबंदा बीबी कनिका मिड्डा जिन्हों की बेटी कृषा बेटा सदिक समूह परिवार वालों परिवारों की सुख शांति चढ़ती कला बच्चों की तंदुरुस्ती दित्तियां हुई दातां दा शुकराना करदियां होयां श्री सुखमनी साहब जी दे पाठ करवाए लंगर सेवावां हाजर कीतियां शुभ मनोभावनावां गुरमत अनुसार पूरियां करनियां चढ़दियां कला करनियां गुरसिखी सिदक भरोसा बख्शना आप जी दे हजूर परिवार वालों सुंदर पछाके हाजर दर प्रवान करने लोक परलोक पढ़दे कज लैने करो कृपालता सतगुरु जी कड़ा प्रसाद की देख सज के हाजर है दर प्रवान होवे प्रवान होया प्रसाद संगत विच वरतौन दी आग्या बख्शनी आप जी दे हजूर आप जी दे दरगढ़ दे सेवक स्वर्गवासी सुखबीर सिंह तिन्हां दी 17वीं बरसी दे संबंध विच परिवार वल्लों अरदास बेनती किरपालता करनी परिवारां नूं सुख शांति दी दात बख्शिश करनी सुखबीर सिंह जी नूं आत्मिक शांति दी दात बख्शिश करनी करो कृपा सतगुरु दी समूह संगत दी हाजरी दर प्रवान करनी पावन हुक्म बख्शिश करके संगतां नूं निहाल करो सही प्यारे मेल जिन्हां मिले आप जी का नाम चित आवै नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਦੁਹਰਾ ਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋਚਾ ਹੈ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲਾਂਗੇ

नैनो भेख ठाकुर का रंग सा सग मिन से सब संग चरण चलो मार गोबिंद मिटे पाप जपिए हर बिंद कर हर कर्म सर्वन हर कथा हर दरगह नानक ऊजल मथा बड़ भागी ते जन जग माहे सदा सदा हर के गुण गाहे राम नाम जो करे विचार से धनवंत गनी संसार मन तन मुख बोले हर मुखी सदा सदा जानो ते सुखी एको एक एक पछाने इत उत कियो सूझी जाने नाम संग जिसका मन मानिया नानक तिने निरंजन जानिया गुर प्रसाद आपन आप सूझै तिसकी जानो तिसना बूझै साध संग हर हर जस कहत सर्व रोग ते हर जन रहत आन दिन कीर्तन केवल बखियान गृहस्थ मैं सोई निर्वाण एक ऊपर जिस जन की आशा तिसकी कटिया जम की फासा पार ब्रह्म की जिस मन भूख नानक तिस है ना लागै दुख जिस को हर परम मन चित आवै सो संत सुहेला नहीं डुलावै जिस पर वे अपना कृपा करै सो सेवको किसते डरै जैसा साध ऐसा दिष्टाया अपने कार्य में आप समाया सोदत सोदत सोदत सीजया गुर प्रसाद तत् सब बूझया जब देखो तब सब किश मूल नानक सो सुखम सोई असथूल नह किछ जनमै नह किछ मरै आपन चलते आप ही करै आवन जावन देश जन देश आज्ञाकारी धारी सर्वश्रेष्ठ आपे आप सगल मैं आप अनक जुगत रच था प्यो दाप अविनाशी नाही किछ खंड धारण तार्यो ब्रह्मांड अलख अपे पुरख प्रताप आप जपाए ता नानक जाप जिन प्रभ जाता सो सोभावंत सगल संसार उदरै तिन मंत प्रभ के सेवक सगल उदाहरण प्रभ के सेवक दुख विसारण आपे मेले कृपाल गुर का शब्द जप पे निहाल उनकी सेवा सोई लागै जिसनु कृपा करै बड़भागै नाम जपत पावे विश्राम नान तिन पुरख उत्तम कर मान जो किछ करै सो प्रभ कै रंग सदा सदा बसै हर संग सहज सुभाए होवै सो होए करनै हर पछाणै सोए प्रभ का किया जन मीठ लगाना जैसा सा तैसा दिष्टाना जिस ते उपजे तिस माहि समाए

भाई। जन्म मरण के मिटे देशे साधु के पूर्ण उपदेशे पहुँ चुका निरपोह बसे सगले ब्याल मानते कह नसे। जिसका सातिन कृपा तारी सा संग जप नाम रारी। थित पाई चुके प्रभ गवण सुन नानक हर हर जस रवण। निर्गुण आप सरगुण पी ओही कला धारिन सगली मोही। अपने चित बवे आप बनाए अपनी कीमत आपे पाए। हर बिन दूजा नाही कोए सब निरंतर एको सोए। उत्पुत रव्या रूप रंग पय प्रगास साध कै संग। राचे दा चणाया।

बोलो जी वाहिगुरु। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमरकै गुरु नानक लई त्याय। फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदासै हुई सहाय। अर्जुन हर गोबिंद नाम सिमरो श्री हर राय। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਜਿਸ ਡਿੱਠੇ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ ਘਰ

सेविय अहनिस सहज सुपाय दर्शनम परसियाय गुरु के जन्म मरण दुख जाय होवे सिफत ससमदी नूरे अरसों कुरसों चटिया तुद जिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटी है सज्जन सच्चा पातशाह सिर साहांद साहो जिस पास बैठे आंसो ही है सब नांदा वेसाहो सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी धनासरी महला चौथा हम अंधले अंध बिखे बिखराते क्यों चाल है गुर चाली

हम अंधुले अंध बिखे बिखराते क्यों चल गुर चाली सतगुर दया करे सुखदाता हम लावे अपन पाली गुर सिख मीत चलहो गुर चाली

पाई, आख थके कीमत नहीं पाई, जे सब मिलके आखन पाहे, वड़ा ना होवे घाट ना जाए, ना ओह मरे ना होवे सोग, देंदा रहे ना चूके भोग, गुण ए होर नाही कोए, ना को हुआ ना को होए, जे वड़िया ते वड़ तेरी दात, दिन दिन करके कीती रात, खसम भी सारे हैं ते कम जात, नानक नावे बाज सनात, राग गुजरी महला चौथा, हर के जन सतगुर सतपुरखा, बिनो करो गुरपास, हम कीरे किरम सतगुर।

जनन पिता लोक सुत बनिता कोय न किसकी तरिया सिर सिर रिजक संबाही ठाकुर काहे मन पाव करिया उड़े उड़ अवैसे कुसा तिस पाछै बचरे शरिया तिन कवन खुलावै कवन चुगावै

तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ, जेते बदन सृष्ट सब तारै, आप अपनी बूझ उचारै, तुम सब हीते रहत निरालम, जानत वेद भेद अर आलम, निरंकार निर्विकार निर्लंब, आद अनिल अनाद असंभ, ताका मूढ़ उचारत भेदा, जाको भेव न पावत बेदा, ताको कृपा हन अनुमानत, महामूढ़ कछ

कृपा करी हम पर जगमाता, ग्रंथ करा पूरन सुब्राता, किलबिख सगल देह को हरता, दुष्ट दोखियन को क्षय करता, श्री अस्तु जब भय दयाला, पूरन करा ग्रंथ तत्काला, मन बांछत फल पावे सोई, दुख न तिसै व्याप्त कोई, अड़िल सुनै गुंग जो याहे सुरस न पावई, सुनै मूढ़ चित लाए चतुरता आवई, दुख दर्द पौ निकट न तिन नर के रहै, हो जो या की एक बार चौपाई को कहै, चौपाई संबत सत्रह है सहस पणिजय, अर्ध सहस पुन तीन की जय, भाद्रव सुधि अष्टमी रववारा, तीर्थद्रव ग्रंथ सुधारा, स्वैया पाए गहे जब ते तुमरे, तब ते को आंख तरे नहीं आन्यो, राम रहीम पुराण कुरान, अनेक कहे मत एक न मान्यो, सिमृत शास्त्र वेद सबै,

हार पर्यो स्वामी के द्वारे दीजे बुद्ध विवेका। ओ फोकट कर्म जिन्हां ने कीत्यां कोई लाभ नहीं अते ना ही परमात्मा की प्राप्ति हुंदी है, गुरु साहिब उन्हां दा जिक्र इस तरह करदे हन कि वेदां दा पाठ करना अते उन्हां दी केवल विचार कर लैणी जां न्योली कर्म करन नाल प्रभु की प्राप्ति तां की होनी सी, सगों पंजां विकारां काम क्रोध लोभ मोह अते अहंकार तो भी छुटकारा नहीं होया ते अहंकार होर वध गया। ओ प्रभु मौन धारण करन नाल बर्तना दा त्याग करके केवल हत्थां नूं ही अपने बर्तन बनाउणा, कपड़ियां दा त्याग करके नंगा रहना, घर छड के जंगलां विच रहण नाल दुबधा दूर नहीं हुंदी, ना ही उस दी प्राप्ति हुंदी है। उस दी प्राप्ति लई तीर्थां ते वासा कर लैणा जां सिर उत्ते आरा चलवाण नाल जां अजिहे लखां ही यतन करन नाल हिरदे दी मैल दूर नहीं हुंदी। जे कोई बहुत दानी बन के इस्त्री हाथी घोड़े अन्न कपड़े अते जमीन आदि दान करके उस प्रभु की प्राप्ति चाहे तां भी नहीं हो सकती। योग दे 84 आसन कर लवे, सिद्धि प्राप्त कर लवे, अपनी उम्र लंबी कर लवे तां भी हरी की प्राप्ति नहीं होंदी। कोई पूजा अर्चा डंडौत खट कर्म भी करे तां भी होमें का ही पसारा वधदा है। परमात्मा नूं भुल के मन नूं रंग तमाशियां सुख दे साधना नाल हंकार पैदा करके मनुख नरकां दे राह तुर पैंदा है। इस लई इन्हां सब कर्म कांडां नालों शुभ कर्म है परमात्मा दी कीर्ति सिफत वडियाई गुणां दा गायन करना, जिसनूं ओह वाहिगुरू अपनी मेहर करके अपनी सिफत करवा लवे उस नूं उस दी प्राप्ति हो जांदी है अते उस दा सेवक बन जांदा है, उस दे नाम दे रंग विच रंगिया जांदा है। साहिब बख्शिश कर रहे हन, तेरो सेवक ए रंग माता पयो कृपाल दीन दुख पंजन हर हर कीर्तन ए मन राता।

0: चक्कर बक्कर फिर चतर चक मान ये पुरतीन
1: लोग चौदह के बिके जग जा पीजे जाप
0: आद देवन आद मूरत था प्यो छबे जे थाप
1: परम रूप नीत मूरत पूरन पुरख पार
0: शर विश्व रचो छंजन कण पंजन हार
1: कालहीन कला सुत काल पुरख देश
0: धर्म धाम सु परवरत पूत लख पेश
1: अंक रागना रंग जाके जात पात ना नाम
0: गर्भ कंजन दुष्ट पंजन मुक्त दाय काम
1: आप रूप मेक अनुसत एक पुरख अवतूत
0: गर्भ कंजन सर पंजन आद रूप सूत
1: अंगहीन पंगनात्म एक पुरख पार
0: सर्व लाय सर्व काय सर्व को विद पार
1: सर्व गंता सर्व हंता सर्व ते अनपेक
0: सर्व शास्त्र ना जानिए जे रूप रंगो रेख
1: परम वेद पुराण जाके नेत पाखत नित
0: कोर शिवर

0: निवास है गरीब मुल्खिराज है
1: स्वरूप त्रिमुक्त बभूत
0: है भक्त प्रभा है संयुक्त सुधा है
1: स्वरूप अपेदी अनुप
0: समस्त उपराज है सदा सर्व साध है
1: समस्त सलाम है सदैव काम
0: निर्वास रूप है अगाद है अनूप है
1: अगाद रूप है अनाद स्वरूप है
0: अनंदी अनाम है त्रिभंगी त्रिकाम है
1: त्रिपादे अगंजे अगादे
0: शुभम सर्पागे सुसर्पा अनुरागे
1: युक्त स्वरूप है अचुज है अचूत है
0: नरकम प्रनाश है पृथुल प्रवास है
1: प्रभा है सदैव सदा है
0: विभुक्त स्वरूप है प्रयुक्त अनूप है
1: युक्त सदा है विभुक्त प्रभा है
0: अनुक्त स्वरूप है प्रयुक्त

0: हर नार्य खंड पर नार्य मंड
1: अन पवन आस मन मन प्रकाश
0: गुण घर प्रणाम जल थल मुदाम
1: अंचिज अंग आसन पांग
0: उपमा पार गत में तू दार
1: जल थल मंड दिस विस अपांड
0: जल थल महा कदिस विस भयंत
1: अन पवन आस तेता तुरा
0: आजान बाहु एक के सुदाहु
1: ओंकार आद कतनी अनाथ
0: खल खन के आल गुर बर अकाल
1: कर प्रणाम चित चरण
0: नाम अंचिज गात अंचिज न बात
1: अंचिज गात अनुरंज बात
0: अंटुट मदार अंडठ पार
1: अटीट धर्म अटीट कर
0: अनबन अंत दाता।

0: चरवे चुर है, जलते चुर है,
1: मंडा से कल कंडस है,
0: पारते पर है, कृणा कर है,
1: अजप्पा जपे तप्पा तप है,
0: अक्ता कृत है, अमृता अमृत है,
1: अमृता मिते करना कृत
0: है, अक्ता कृत है, तरनी त्रित है,
1: अमदेश्वर है, परमेश्वर है,
0: अक्ता कृत है।

0: भुजंग प्रिया चंद नमो सूर्य सूर्य नमो चंद्र चंद्र
1: नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्र
0: नमो अंधकारे नमो तेज तेज
1: नमो बृंद्र बृंद्र नमो बीज बीज
0: नमो राज संताम संसात रूपे
1: नमो कर्म तंग तंग स्वरूपे
0: नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञान
1: नमो मंत्र मंत्र नमो ध्यान ध्यान
0: नमो युद्ध युद्ध नमो ज्ञान ज्ञान
1: नमो पोज पोजे नमो पान पान
0: नमो क्लय कर्ता नमो शांत रूपे
1: नमो इंद्र इंद्र अनादम प्रभूते
0: अलंकार रूपे अलंकार अलंकार
1: नमो आसे आसे नमो बांक बंके
0: भंगी स्वरूपे अनंगी अनामे
1: त्रिभंगी त्रिकाले अनंगी अकामे
0: कचरी चंद अजय अलय अभय अभय
1: अभु अजु अनास अकास
0: अगंज बंज लख पख
1: अकाल दयाल अलेख पेख
0: अनाम अकाम अगाढ़ा
1: अनाथे परमाथे अजोनी अमोनी
0: न रंगे न रंगे न रूपे न रेखे
1: अकर्म अपर्म अगंजे अलेखे
0: भुजंग प्रया चंद नमस्तुल प्रणामे समस्तुल प्रणासे
1: अगंजला नामे समस्तुल निवासे
0: कामन विभूते समस्तुल स्वरूपे
1: वो कर्म प्रणाशि सुधर्म प्रभूते
0: सच्चिदानंद सतरंग प्रणासे
1: करिमल को निंदा समस्तुल निवासी
0: अजाय विभूते गजाय गनीमे
1: हरियम करियम करिमल रहे।

0: तायो
1: गुर्विया उच्चो सत्यजग श्री भगवान को भेद न पायो
0: वाहे गुरुजी का खालसा
1: वाहे गुरुजी की फतेह
2: एक ओंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह पाशाह दसमी कवि बाश बेनती चौपी हमने करो हाथ रक्षा पूरे हुए जित की अच्छा
1: तब चरण मन है हमारा अपना जान करो प्रतपारा
2: दस बैत गावो आप हाथ मोहि बुझावो
1: सुखी बसे मोरो परिवार सेव सिख सब करता रा
2: रक्षा निश्चय करिए सब वीरन को आश्रम लिए
1: पूरन होए हमारी आशा तो भजन की रह प्यासा
2: हमें शार्ट के अवन दियो जो वो चो सो तुम दे पाओ
1: सेवक सिख हमारे तारी है चुन चुन सत्र हमारे मारी है
2: आप हाथ में बढ़िया मरण काल का त्रास मिलिए
1: जो सदा हमारे पच्छा श्री अस्तु जु करे हो रक्षा
2: साहिब संसार प्यारे
1: दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर दस कंता
2: काल पाए
1: कर विसन प्रकाशा सकल काल का

0: जिन नाम लाए से हर हर सदा त्यावहे कह नानक सच्ची साहिब ज्यो पावे तिवे चलावहे तिन के मन वसिया जिन तरो लिखिया आया
1: गली किने ना पाया
0: कह नानक शब्द सोहला सतगुरु सुनाया
1: पवित्र वे से जना जिनी हर त्याया
0: त्याया पवित्र होए गुरमुख जिनी त्याया
1: पवित्र माता पिता कुटुंब से पवित्र संगत सबाया
0: कहंदे पवित्र सुन दे पवित्र से पवित्र जिनी मन वसाया
1: नानक से पवित्र जिनी गुरमुख हर हर त्याया
0: करनी सहज न उपजै बिन सहज

0: संकट मिटे दर्श तुहारो होए।
1: वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।
2: बसंत की वार महल पंजवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर का नाम त्याय के हो हरिया पाई
3: पाई
2: मंत्र त्रिवण मौले अमृत फल पाई
3: साधु सुख।

जब लो नहीं बाग लीलार उदय, तब लो प्रमते फिरते बहुतायो, काल कोर समुद्र में बुडत थे, कब हो मिट है नहीं रे पछतायो, तत विचार जह मथुरा, जग तारन कौ अवतार बनायो, जप्यो जिन अर्जुन देव गुरु, फिर संकट जो गर्भ ना आयो, जप्यो जिन अर्जुन देव गुरु,

अहनिस सहज सुभाए दर्शन परखे आए गुरु के जन्म मरण दुख जाए होवे सिफत खसमदी नूर अरसों कुरसों चटी है तुद डिठे सचे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटी है सज्जन सच्चा पातशाह सिर साहां दे साहो जिस पा

हर नाम चितेरे सो कहो टल गुर सेविया अहनिस सहज सुभाए दर्शन परसे आए गुरु के जन्म मरण दुख जाए होवै सिफत खसम दी नूर अरसों कुरसों चटी है तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटी है सज्जन सच्चा पातशाह सिर साहंद साह जिस पास बहिठिया